आपको बाखबर, हर खबर से खबर वो जो आपके इल्म में लाना जरूरी है। रेडियो अमन नेटवर्क, यन रंग अम।

0: नवे वरजे नवे हेले नवे खुशाले द मरगानो खग आवाजुना औ द फिजा ताजा सुकून दा वक्ते चिखपल जत सुकून वरकड़े औखपल वस बख सोच सरा पेल कड़े राजे चे यूशु द खुशाले द मुस्का औ मुजबतु खबर सरा तासो अवरे रेडियो अमन 88.4 करक
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका कारोबार एक नए बुलंदियों तक पहुंचे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का हर लम्हा आपके लिए फायदेमंद साबित हो? तो देर किस बात की, हम आपको दे रहे हैं वो हल जो आपके कारोबार को देगा एक नई रफ्तार। हमारी ये खिदमत आपके कारोबार को नई मार्केट तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। आज ही हमसे राबता करें और अपने कारोबार को बढ़ाने का ख्वाब हकीकत में बदलें, क्योंकि कामयाबी के सफर में हम हैं आपके साथ। राबता नंबर 0345-93-32-580।
0: द आवाज दे द अमन द आवाज दे द पाकिस्तान द आवाज दे द रेडियो अमन 88.4।

0: रेडियो अमन करक आपको दे रहा है एक खुशखबरी। अब आप अपने दिल की आवाज रेडियो अमन करक के साथ मैसेज के जरिए भी शेयर कर सकते हैं। अब आप हर प्रोग्राम में फॉर्मेट के मुताबिक अपनी फरमाइशों और चाहतों का इजहार मैसेज के जरिए कर सकते हैं। मैसेज करने का तरीका बहुत ही आसान है। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, वहां पर टाइप करें RAK, फिर थोड़ी सी जगह छोड़कर अपना नाम लिखें, फिर अपने इलाके का नाम और अपना पैगाम लिखकर हमें 8583 यानी 8583 पर भेजें। आपका मैसेज हमारे प्रोग्राम की रौनक।
1: रेडियो अमन 88.4 करते पदे पंदे बटे खुल खुले प्रोग्राम नवी तयावराओ जयावरम
2: रेडियो अमन 88.4।

समय सुनाते हैं हल्की मौसीकी और एक प्यारी सी आवाज जो आपके दिलों को सुकून दे और लम्हों को खूबसूरत बना दे। रेडियो अमन 88.4 कर आपके

अच्छी ग्रानो कदर दानी मिरावली ने बिल्कुल मना दर तपा दे छी दैट टाइम 4 ना 5 4 ना 5 6 एम के का स्मारक पाकिस्तान प्रोग्राम पेश के की दडी प्रोग्राम पेश का मतलब और मकसद मुदा दे सिमरा यदे से खुला द ता मिलाव छी दर ता नसीब छी छी आखी खुला ल वाचिना कल हम तासु आईने त वाईने त शीशे त गोर छी बमंग दर यदी गो और संत दुआ कवे मंग त दुआ कवे मतलब मुदा दे मकसद मुदा दे बाकी खनोर कबाड़ मुखरस वाला से पाकी मोहम पैसे गटल अश्व का तासु सोच कड़ाई भी कना ची तनोर कार बम उकड़ा पाकी बम बांध बहु पैसे गटले उलेले कना ची इंसान त पाकर बुल इज्जत अंदमुना सही वरकड़ी सही सलामती वरकड़ी खुली वरकड़ी कना औसवानी वरकड़ी भी मतलब लका दुनिया बांध हर किस्म कार का वाला शिकना सही शोला लका दोस्त दस यो कार हो मतलब ग्रांड न देखना ची

हो गए सो एसएमएस से मिलावा हवाई छे रखी फटा के अहमदाबाद एक्सचेंज जेल चौक ना। और राज भाई वेलकम टू द शो, वालेकुम सलाम और रकीब हटक यो जहान मना, थैंक यू सो वेरी मच। तो सही देसरा तनहा दिल रुबा हट, हमें भी शौक बहुत शौक था रोशी हान

ओके छे और नेक्स्ट छिक हमने वही का नाम तनहा दिल रुबा हटक मैच है जो छे हम बहुत शौक था रोशी खान अच्छे दीदार महबूब अच्छे का दुपट्टा जो सर से गिरा तो जुल्फी दीवार बन गई। ओके जी थैंक यू सो वेरी मच लश की जर जर स्वीट सर शामिल हूँ टाइम बचतों को वही छे मेक्यूट रोशी खान स्वीट भाई जानी फॉर यू प्यार इतना करो कि हद न रहे और यकीन इतना करो कि शक न रहे वफा इतना करो कि हम बेवफाई न रहे दुआ इतना करो कि जुदाई न रहे। थैंक यू सो वेरी मच डियर अच्छा कच्चा मैसेजेस चीजें अप डाउन के शामिल सहीदा यानी जो पहले मैं सेंड करे हुए रस्तों शामिल छो या रस्तों में सेंड करे हुए पहले शामिल छो मैंने ओड़े माजरत को शामिल है जी बटोल ठीक था।

ओके छी नेक्स्ट बिल्कुल आगा शेर तो से छा दे लाइक खड़े दे छी बिल्कुल दिलरुबा खते का आसमा सेफ ता वैचे हमें बहुत शौक था आसमा सेफ दीदार महबूब का दुपट्टा जो सर से गिरा तो जुल्फी दीवार बन गई ठेस और बिल्कुल चाहता है दिलरुबा खटक दिलाई खेड़े दे चाहता है आसमा सेफ ता सही यो जहान मनना रकीब खटक वंस अगेन वैचे ओके रकीब वो यो जहान मनना थैंक यू सो वेरी मच Bhaiji, assalamu alaikum, assalamu alaikum, sweet bhai Jani, this is me, one and only, your friend, Kutri, achay, that's Shamil Shoei, was sahih da message to Shamil Shoei, bhiya, next to galai da, thank you so very much. Achay, khwajo, ure dun ko, da se chal lai ka na, zar gandhi ta roj sa, cheta bane se, mo sarao sa, सर क्यों नहीं देता रोशन शाह अगर नफास तो से एसएमएस चीज़ की इम्पोर्ट एसएमएस दिया गाबा खान शामिल हुआ तो से कॉल चीज़ दिया गाबा खान शामिल हुआ जी

अच्छा दस चल बकू रुर जानते हैं बिल्कुल तुझे काल हाँ शामिल हूँ रुर जानते हैं वो बिल्कुल वाले गबू खन्ना दमसाज मरवाता बिल्कुल दगा दस्तान मरगड़े डेरा मनुना दिलोगे कल्ची

नेक्स्ट बिल्कुल दिलरुबा हटक वही चे एक तेरा ही तो ख्याल रहता है मुझे वरना अकेले बैठकर कौन मुस्कुराता है. ओके जी थैंक यू. नेक्स्ट मैसेज होगा वही सलाम राज भाई वेलकम टू द शो. सलाम टू हेफसा हटक रोशिहान ता ऐना हटक ता. ओके आई एम मुस्कान हटक. वालेकुम सलाम मुस्कान हटक थैंक यू सो वेरी मच फॉर हिस एमएस. आपसे हटक दारोशी खान दाइना हटक तो सलमुना और से प्रोग्राम रसर और विशा.

0: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jhan Rang Amal.
1: हो या रात, खुशी हो या तन्हाई, हर वक्त एक आवाज साथ हो। रेडियो अमन 88.4 कारक आपके हर लम्हे का साथ।

0: 8:10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: कल की यादें आज के लम्हे और आने वाले कल की उम्मीद सबको जोड़ती एक आवाज रेडियो अमन 88.4 तरक हर वक्त आपके साथ। दिन हो या रात, खुशी हो या तन्हाई, हर वक्त एक आवाज साथ हो। रेडियो अमन 88.4 तरक आपके हर लम्हे।

0: कल की यादें, आज के लम्हे और आने वाले कल की उम्मीद, सबको जोड़ती एक आवाज़ रेडियो अमन 88.4 तरफ हर वक्त आपके साथ।
1: तारखाना दस ख्वाजे ख्वाजे सांदर लगावली दीदा सशाई वोरवे
2: जी दाहो मेरे रेडियो पर बाजूर से उखसिए दो नो दा बेंड में तो वो 88.4 वर बंदे रोगलाल
1: तारे खाना दा 88.4 से शायदी
2: MSD 88.4 में चेकला वाला गुवान नो दाहो करक रेडियो वर बंदे रोगला दाहो दे करक रेडियो फ्रीक्वेंसी दो 88.4
3: हरियो अरमान पति पूरा कम सका खार तलाड़म तालप बंगड़ी रोड़म
1: ब्याहवार साचे बाजोर तालुटी चेवार रेडियो जून ताज़ा ओखलो चिदा से खोजा खोजा पारुगामी ना ब्याज़ा ओरवो
2: बिल्कुल मिजीर साची सी वार रेडियो तुता हां ओखलन त बिल्कुल 88.4 बंदे खोजा खोजा प्रोग्रामी ना ख्वाजे ख्वाजे सांदरे अवरे दाई से

0: सुन रहे हैं FM 88.4 अमन रेडियो करण। ये है रेडियो अमन,
1: रेडियो अमन
0: आपके दिल की आवाज,
1: दिल की आवाज।

0: ये है रेडियो अमन,
1: रेडियो अमन
0: आपके दिल की आवाज,
1: दिल की आवाज।
0: आप सुन रहे हैं FM 88.4 अमन रेडियो करण। ये है रेडियो अमन,
1: रेडियो अमन
0: आपके दिल की आवाज,
1: दिल की आवाज।